हम गोविंदम प्रणवानंदम सद्गुरुम प्रणतोम्य हम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षु